0: अल्लाह यार योगी।
1: ख्वाहिश है तुम्हें तेज चलाते हुए देखें,
0: ये दिहाड़ा थोड़े दिनों लंघ गया, बड़े साहब जाने चमकौर दी।

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमृत नाम मने सुख पाइए सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटाओ सिमरो।

गुरु हरकिशन साहब जी अकाल मूरत उम्र विच भावे बहुत छोटे हैं पर कारनाम्या विच कोई कमी नहीं। अज दा पढ़िया लिखिया मनुख कहंदा है भी साडे विच ते गुरु विच की फर्क है, जिहो जिहा साडा शरीर ओहो जिहा गुरु दा शरीर। पर ऐसी मनमुख बिरती है, इसनू कहा जांदा है कि पढ़िया मूर्ख आखिए जै लब लोभ हंकार। ये अहंकार है कि गुरु नू कुछ ना समझना। पर धन गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह, उम्र छोटी है पर धन गुरु नानक पातशाह जी दी पवित्र सोहनी गद्दी ते आप विराजमान होए। भावे उम्र छोटी है, जिमें चंदन दा बूटा बहुत छोटा हुंदा है पर सारे जंगल नू महक वंडदा है। जो भी चंदन दी शरण विच हुंदे हन वह भी चंदन हो जांदे हन। जिस तरह हीरा बहुत छोटा हुंदा है आकार विच पर जदों उसकी कीमत पैंदी है तां लखां करोड़ां तक चली जांदी है। इसे तरह पारस है, आकार विच बहुत छोटा हुंदा है पर लखां मणा लोहा पिया होवे ते नाल छो जाए पारस ते सारा लोहा सोना हो जाता। इसे तरह धन गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे मालक, भावें उम्र छोटी है पर वड्डे कारनामे कीते। किते रोगियां दे रोग दूर कर रहे हैं, किते कोड़ियां दे कोड़ दूर कर रहे हैं, किते शज्जू महरे एक मूर्ख दी सिर ते छड़ी रख के गीता दे अर्थ करा रहे हैं। जिथे भी आप चरण पाउंदे हन उथे मेरा दा मीह वस जांदा है। इसलिए कहा है कि जिस दिथे सब दुख जाए, क्योंकि गुरु दा दर्शन करके जे दुख नहीं नसे तो फिर किथे नसनगे। होवे सिफत।

जिस गुरु घर का नाम आज बंगला साहब है, ये राजा जय सिंह का बंगला होता है। राजा जय सिंह औरंगजेब के पास अहलकार सी, पर गुरु घर का भी अति प्यार वाला, बड़ा प्यार वाला गुरु का सिख सी। ते अपने घर आके राणियों नू सतगुरां दी बेअंत उस्तत बेअंत कौतक सुनाया करदा सी। भई वेखो छोटी अवस्था विच किडे किडे वड्डे कम कर रहे हन, किवें संसार दी रक्षा कर रहे हन, किवें जलदे बलदे होए संसार नू दुखां विचों कढ रहे हन। तां राणी दे मन विच आया, भला वेखां सही इन्नी तारीफ करदे हन, कोई मेरे भी दिल दी गल बुझदे हन के नहीं। तां अपने पति नू बेनती कीती, भई सतगुरां नू जाके अरदास करो, बेनती करो इस ग्रह विच भी चरण पौन आके। राजा जय सिंह ने जाके निम्रता सहित बेनती कीती, महाराज कृपा करो, मेरी राणी भी आप जी दे सोने दीदार करना चाहती है। धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह मुस्कुरा पे, कहण लगे भाई वो दर्शन भी करना चाहती है ते साड़ी प्रीख्या भी लैनी चाहती है, जरूर चलांगे भाई। धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी ने जिस दिन आना सी ना महलां विच, ते राणी ने जितनिया भी नौकरानियां कम कर दियां सन महल विच, सारियां नू राणियां वाले कपड़े पवा दिते ते आप नौकरानियां वाले कपड़े पा के बह गई। भई जे सच्चा गुरु होवेगा तो मैनू लभ लवेगा, ते नाले मैनू मां आख के मेरी गोदी नू भी भाग लावेगा, मेरी गोदी विच बैठेगा। धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह छड़ी हाथ विच पकड़ी हुई है, जदों राजा जय सिंह दे महल विच आए ते सारियां बीबियां जिन्हां ने नौकरानियां ने राणियां वाले कपड़े पाए हुए सी, छड़ी मारी आउंदियां ते कहंदे ने ए नहीं राणी, ए नहीं राणी, ए भी है कोई होर सवानी। सारियां तो लंघ के जिथे पटराणी बैठी सी ना गोलियां वाले कपड़े पा के, ते महाराज उन्हूं कहन लगे भई नाले तां तू अपनी गोद विच बठाउणा चाहुनी है ते नाले साडी प्रीख्या लैनी चाहुनी है, उचारण करो श्री वाहिगुरु। राणी दे नेत्रां विचों जल आ गया, ओ मेरा दे साईं, ओ बख्शिशां दे सागर, मैं भुल गई सां, मेरे ते बख्शिश कर, मेरे ते रहमत कर। ता धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी ने इस नूं मां करके पुकारिया ते इहदी गोदी विच बह के इस नूं भाग ला दिते, रंग ला दिते। गोदी विच बैठन दी देर सी, इहदे मन दी इच्छा सी के मेरे घर पुत्र होवे, इहदे घर कोई औलाद नहीं सी। पर जदों सतगुरु गोदी विच बह गए तां सारियां ही इच्छावां खत्म हो गईयां, ये मंगना भी भुल गई कि मेरे घर भी कोई पुत्र होवे। ते सतगुरां दी एडी बख्शिश होई, एडियां रहमतां होईयां कि अज बंगला साहब जिथे लखां ही संगतां रोज आके शीश झुकाउंदियां हन ते नाम दी दात प्राप्त करके दुखां दी निवृत्ति करके लोक परलोक दे सुख माण के जांदियां हन, अज ओही धरती तों जमीन आसमान तो यही आवाजां आउंदियां हन, श्री हर कृष्ण ते आईए।

संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे महापुरखा ने आख्या अज भाई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं मजदूरां वाले कपड़े पा ले एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन कहन लगा जी असी मजदूरी करना चाहते हैं करो अठ घंटे काम करना पड़ेगा ठीक है करांगे मजदूरी तय हो गई जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहे ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा है फिर दुगनी मजूरी देन लगा कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवां कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं ऐसे बंदे ता मिले नहीं खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा प्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया कल आपां भी चलांगे भाई बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे अज भी भाई काम मिलेगा ते ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ए मजदूर नहीं हन ए कोई फरिश्ते नहीं ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं ते जदों वेखदियां वेखदियां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया कहन लगा तू मजदूर नहीं है ऐसा नाम रतन निर्मोलक उन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको कुछ सिख लंघ रहे सन उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने ते झट चरना ते मथा टेकिया गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां इहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ सानू चंगे राह लाओ ते आप इस भेस विच खड़े हो ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

साहब जी की वड़ियाई का शुरू किया है। छे विशेषताइया वो महाराज जी सेवा लैन 15 मिनट समाप्ति है। इस तरह विराजमान रहने की कृपालता करनी है।

ये पावन शब्द पावन राग साडे सत्कार योग प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अमर सिंह जी भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी जो भाई साहब भाई दया सिंह जी पटना साहब वाल दे प्राता साहब ने वो भी गुरु की हजूरी विच सुशोभित ने साडे हंसलो तो आए दलजीत सिंह जी वैनकूवर तो वीर जी आए ने तो बड़ा दर्शन दार संगत दे होए ने तो संगत वालों हुक्म आया सी कि राग 10 मिनट जरा ज्यादा लाने ने तो ये सोरठ राग दे विच आप जी ने शब्द सरवण किया है तो आओ दो तीन रीतां जरूर गायन करनिया सन पर संगत वालों हुक्म है कि एक दो रागां दी बंदिशां जरूर सरवण करवाउणियां हन आओ इस तों पहला एक रीत फिर गायन करांगे पहला आओ एक नौ मात्र दी बंदिश है आप जी दे सन्मुख बहुत ही सुंदर है पुरातन चीज है और बड़े प्यार नाल सरवण करो।

दोनों द्वारे विच सोने में लपेटी हाथ चौबन ही फड़ी रही, पेशी दर पेशी अते मिसल हजार रही। खेल गयो खेली खेत खोपड़ी।

दिन मेरे ते ना आवे, मैनू शुभ उपदेश दियो, कोई अपनी कलाम दियो जिस नाल मेरा लोक भी ते परलोक भी शौर जावे, क्योंकि हर वेले मेरा अंदर जलदा रहिंदा है। जो भी पुरुष कोई जुल्मी होंदा है, दुख देन वाला होंदा है, वो कदे सुख दा साह नहीं लै सकदा।

फिर सेवा विच ला दिता। आख्या भाई अपने मन रूपी भांडे नूं पहला साफ कर, फिर तैनू बंदगी दी दात देवांगे, भाव सेवा कर। ते रोज अदम बादशाह दे अमृत वेदे महापुरखां दा इशनान कराउणा। 12 साल बीत गए, उस

सलामत अपने गुरु दे चरणा विच आ गया ते चरण पकड़ दे महाराज मैनू सिमरन दी दात दियो कर देवो मेर नाम जपदा रहा तेरा जी दुनिया है मुस

दे संग न चालस तेरे तना। ए जीव ए तन ए माया दौलत तेरे नाल नहीं जान, एने तेरा साथ नहीं देना। सह पंचम पातशाह फरमान कर दे ने संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मन। ए मूर्ख मन क्यों तू माया दे विच उरदिया वे, क्यों मोह माया दे जंजाल विच पै गए, अपनी सलीयत नु भुली बैठा, माया ने तेरे नाल ही नहीं जाना। संग न चालस तेरे तना, लेंदा पद दुआए तू माया करे अकत। क्यों बद शीशा लैके बद दुआ लैके माया नु अकत्र कर रहे, माया कठी ना कर। ए ठीक है के माया तो बगैर गुजारा नहीं, निर्दन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे कितना तरे, निर्दन नु कोई आदर भी नहीं देंदा, माया तो बिना गुजारा नहीं। पर सैम आख देने जीव माया भी ओनी होवे जो तेनु परमेश्वर दा ना ना भुला दे, तेनु वाहिगुरु भुल ना जावे, माया भी ओनी कोई चाहिए गुजरायन जोगी। सैम फरमान कर देने लैंदा बद दुआए तू माया करे अकत। जिस माया नु तू अकत्र कर रहे उस माया तेरे नाल नहीं जाना। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। इस जुग में सोबा नाम की, पर इंसान दे मन अंदर गलत फहमी पैदा होगी, कहिंदा है माया दे नाल ही सब कुछ है। जी माया ते जहान है, जी माया ते साख संबंधी ने, जी माया ते रिश्तेदार ने, जी माया ने ते तियां पुत्र ने, नहीं ते माया तो बिना कौन किसे नु कुछ समझदा है, माया तो बिना कदर ही नहीं। पर सैं फुरमान कर देने जीव ना, इस जुग

माया दी शोभा आवनी ते जानी है पर नाम रूपी शोभा सदा ही थिर है। नाम रे साधु रे जान तो बाद भी दुनिया याद कर दी जेड़ा नाम जप के जांदा है सिमरन करके जांदा है। भगतां ने केड़ी कोई माया कठी कीती एक माया उन्हां दे पास सी जो अज असी उन्हां नूं नमस्कारां कर रहे हैं। लोकां भावें नीवी जाति वाला कह दिता है पर असी नहीं कदी कह सकते रविदास जी आप जरा पणा हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करनी कहिंदे आ कदी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसी माया उन्हां दे पास सी ऐसा धन उन्हां दे कोल सी केड़ा ओ नाम रूपी तन जीव तू ही अकत्र कर तू ही ओ तन इकट्ठा कर जो तेरे जान तो बाद भी तेरा कोई नाम लवे कि चंगा पुरसी अमृत वेले उठ के नाम जपदा सी सिमरन करदा सी एही तन तेरे नाल जाना ए तन तेरे नाल नहीं जाना। साहिबां दा उपदेश है मिलके पढ़ी संग

चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे। चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। जे को जन्म मरण ते डरे, सात जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तांके बल बल जासा। बाबा जी बाणी च आखदे हन नाव रूप भयो साध संग। नाव रूप भयो साध संग, केंद्र जड़ा साध संगत है ना, ये समझो एक किश्ती दी तरह है कि तुसी एक किश्ती च सवार हो गए हो। नाव मैंने किश्ती, अते जो साध संगत बैठ गया, समझ लो वो किश्ती दे विच बैठ गया है। जो किश्ती उसनू इस जन्म मरण दे पाप सागर दे विचों पार कर दे। नाव रूप पैरो साध संग, तो इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने दस्या है कि साधु सानू की रास्ता दसते हैं, की मार्ग दसते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब देता है, बहुत गौर नाल ध्यान नाल सुनो, मन नु जोड़ के। हर मार्ग साधु दसिया, साधु ने ए मार्ग दसिया कि जपिए गुरमंत। साधु कहता है गुरु मंत्र जपो, गुरु मंत्र दा जाप करो। साधु ये मार्ग दसते हैं, हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत। सिंपल गल, आसान गल। साधु ने ये नहीं क्या मेरी पूजा करो, ये नहीं क्या कोई मेरा मंत्र जपो। साधु पूर्ण साधु कदे भी ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा गुरु दा मंत्र जपो। गुरु दे नाल जुड़ेगा, प्रिपेयर करेगा, समझाएगा, कड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जिज्ञासु ओह गुरु दे मंत्र दे नाल जोड़ सके, गुरु दे नाल जोड़ सके। इस दे विच नुक्ता समझने वाला है। साधु ने ए नहीं आख्या कि मेरा मंत्र जपो, कहिंदे गुरु दा मंत्र जपो। साधु हर मार्ग साधु दसिया कि जपिए गुरमंत। हुण इत्थे एक विचार है थोड़ी जी जो समझण वाली है। गुरु मंत्र ओही जपेगा जिसनू गुरु मंत्र मिलिया है, जिसनू गुरु मंत्र मिलिया नहीं है वो गुरु मंत्र जपण दा अधिकारी नहीं हुंदा, उसनू अधिकार नहीं हुंदा। उस दे गुरमंत्र जपे दी कमाई दा जिम्मेवार गुरु नहीं हुंदा जिसने गुरु तो गुरमंत्र नहीं लिया। अते महाराज जी आखदे हन जो इंसान जीवन दे विच गुरमंत्र प्राणी, जो भी प्राणी गुरमंत्र तो हीणा है, गुरमंत्र तो सखणा है, कहिंदे गुरमंत्र हीण जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कहिंदे हन ओदा जन्म त्रिकार है, लहनत है उस दे जन्म दे जिसने हाले गुरमंत्र नहीं लिया। ते प्रश्न है ओदा जन्म पृष्ठ है, विकार है। गुरमंत्र हीण जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है। अगे कहिंदे हन कुकर है, सूकर है, गर्दभ है, सर्पन है, काका तुल खल है। कहिंदे ओ इंसान एना जूना दे विच पवेगा, कुकर है, सूकर है, गर्दभ है, सर्पन है, काका है। कुकर है मैंने कुत्ते, सूकर है मैंने सूर, गर्दभ है मैंने गधे, सर्पने सप, कां। कहिंदे ओ इना जूना दे विच इंसान जाएगा जिस इंसान ने गुरु दा मंत्र नहीं लिया, गुरमंत्र तो खाली है, गुरमंत्र तो सखना।
तो साढ़े वास्ते थे दो चीजा क्लीयर हो रही हैं। नंबर एक, साधु एक ही रस्ता दसता है कि गुरु का मंत्र जपो, गुरु का मंत्र जपो। जेको बचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसादी तरीए। साधुओं का बचन यह है कि गुरु के मंत्र का जाप करो जितना वध तो वध हो सकता है, तो जिहड़ा इस बचन नूं मन लै वह तर जाएगा, दुखां चों मुक्त हो जाएगा, गमां चों मुक्त हो जाएगा, तमाम किस्म दियां मुश्किलातां उसके कोलों नस जाणगियां, जन्म मरण का डर उसका खत्म हो जाएगा। साधु एक ही वचन करते हैं, हर मार्ग साधु दस्या जपिए गुरमंत, गुरमंत्र का जाप करो। पर गुरमंत्र के जाप करन दे वास्ते गुरमंत्र भी तो होना चाहिए है ना, तो गुरमंत्र किस तो मिलता है? कोई अपने आप ही गुरमंत्र जाप करना शुरू कर ले कोई वाली वारस नहीं है, गुरमंत्र गुरु तो मिलता है। जिहड़ी साडी विचार है पिछले हफ्तों तो आपा पहचानन दी चल रही है, जदों किसे इंसान दे सामने मौत जन्म मरण दा भय जिंदगी दे दुख जो पिछले किते हुए कर्मां दे नाल असी हुण दुख भोगदे हां, इस तो सूझी आ जाती है, तो संगत च बैठ के उसनू ए पता चलता है कि उसने अपने आप नू लभना है, अपने आप नू पछानना है। अजिहियां विचारां सुन के फिर वह सोचता है कि मैं किस तरह अपने आप नू पहचाना। अपने आप नू पहचानन दे वास्ते, अपने आप नू लभन दे वास्ते उसनू उसकी इमदाद चाहिदी है जिसनू पता होवे कि तू कौन है। परमात्मा ने सानू बनाया, परमात्मा नू ही पता है कि असी कौन है, अते परमात्मा सानू ए राज आप ही गुरु दे रोल दे विच आके साड़ी ओ गलत हस्ती नू तोड़ के, गलत हस्ती नू खत्म करके, साडे उस गलत हस्ती दे आधार ते जो बिहेवियर्स पक्के होए हन, आदतां पक्कियां होई हन, सुभाव पक्के होए हन, मत पक्की होई है, उस नू सारी दी सारी नू तोड़ के, क्योंकि गुरु दी अथॉरिटी ए हुंदी है कि उस दे सामने तुसी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आ क्यों है, आ क्यों है, आ क्यों है, उसकी मर्जी, क्योंकि उसने तो चलना ही तुहाडी मर्जी दे उल्ट है। जो तुहाडी मर्जी दे नाल चलन लग पिया फिर ना तो गुरु होया ते ना ही वह तुहाडी उस झूठी हस्ती नू तोड़ सकेगा। झूठी हस्ती चाहती मैं इदा नहीं करना, पर जदों असी गुरु दे रिश्ते दे विच आ जाने उदों साडे कोल उस नू इनकार करन दी कोई अथॉरिटी नहीं रह जाती, हक नहीं रह जाता। तो यह एक प्रोसेस है, एक ढंग है, एक विधि है कि जग्यासु आंदा गुरु दे कोल कि बाबा जी कृपा करो मैनू दसो कि मैं कौन हां, किवें जाणा कि मैं कौन हां। तो वो आखदे हन भई ये तेनू असी तां दस सकांगे जे तेरा साडा कोई रिश्ता बने, तू शिष बने। वो आखदा जी मैनू अपना शिष बनाओ, वो कहिंदे साडी शर्त बड़ी तकड़ी है, शिष ते बना लांगे तेनू, पर एक आधार ते, एक शर्त ते कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास, जीवत मरे मरे फुन जीवे ताम मुखंतर पाए, नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए। सतगुरु ताई मिल सकता है जे विचों तू अपने आप नू गवावे। कल दे कीर्तन दे विच भी आप जी ने सुनिया सी कि संतां नू पुछिया हर मार्ग साध मैं दसो मार्ग संतो, तो उन्होंने जवाब ए दिता मन अर्पो होमे तजो, अपना मन अर्प दो अते होमे नू त्याग दो। ऐ विचार चल रही है ना साडी, अपना मन अर्पण कर दो अते होमे नू त्याग दो, तो फिर तुहाडी अपनी कोई हस्ती नहीं रह जाती,
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਅਗਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤ ਬਚਨ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਏ ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੇ ਉਤਾਰ। ਸੇਵਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਟਰਲੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਸਿਰ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜ਼ਿੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮਲੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਸ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰ ਤੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਾਰ ਤੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਕਰਨੀ ਤੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਸਾਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਝੂਠੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਝੂਠੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
जे कोई सिख आखे महाराज इस चीज की की लोड़ है, यह मतलब कि वह अपना ज्ञान उत्थे फिर दिखा रहा है, पर उसके ज्ञान की तो उत्थे कोई बुकत ही नहीं, उत्थे तो पहले ही यह तख्ती लगी है, जीवत मरे मरे फुन जीवे ता मुखंतर पाए, नानक सतगुर तद ही पाए जब विचों आप गवाए, अपना आप गवा दे। अते किसे भी धर्म दे विच जदों शिष्य गुरु धारण करता है उसका एक ही ढंग है कि शिष्य अपने आप नूं सरेंडर कर दिंदा है। की डिसिपलिन है वह गुरु की अपनी मर्जी, वह गुरु जानता है, उस नूं कई लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिकली इस चीज का आ फायदा, इस चीज का आ फायदा, इस चीज का आ फायदा, पर जो सिख है वो सिर्फ एक ही गल देखता है कि एक गुरु का वचन है, बस उसनु ओ उस चाहे फायदा है या नहीं है, वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है, वो रैशनल है या इरैशनल है, पर ओ गुरु का वचन है बस। सिख दे वास्ते इतना ही है कि ओ गुरु दे वचन नू उस दी अथॉरिटी नू चैलेंज नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। तो साडे धर्म दे विच गुरु वाले असी उस दिन बनते हाँ, गुरमंत्र सानू उस दिन मिलता है जिस दिन असी ओ जो सैरेमनी है पंज प्यारियां तो अमृत छक के ते पंज प्यारियां तो गुरु मंत्र की दात वाहिगुरु शब्द जो है वह फॉर्मली उन्हों तो सुनते हैं कि अज तो तुहाडा मंत्र जो है वह वाहिगुरु शब्द है। वह सुनन तो बाद साडी आत्मा दे उत्ते मोहर लग गई, सानू अधिकार मिल गया उस शब्द दे जाप करन दा। फिर उस सिख ने अपनी जिंदगी दे विच जो डिसिपलिन उसनू दस्या गया है उस डिसिपलिन नू उसने कमाना है, उस डिसिपलिन दे विच उसने रहना है, अते नाल दी नाल गुरबाणी दे विचों जो उसनू उपदेश मिली जांदा है उसनू ओ कमाई जाना है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी अवस्था जो है वह उच्ची उठती जाएगी, उच्ची उठती जाएगी, ते बाकी दी आत्मक अवस्था ज्यों ज्यों ओ गुरबाणी दी समझ विचार नाल उच्चा उठेगा त्यों त्यों उसनू आत्मक अवस्थावां प्राप्त हुंदियां जाणगियां, गुरबाणी दे शब्दां दे विचों उसनू रहनुमाई मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी कि तू की कुछ करना है, होर अते मुख करके जो उसनू गुरमंत्र मिलिया है पंज प्यारियां तों उस गुरमंत्र दा जाप करना है, वो है शब्द वाहिगुरु। पर इसकी अथॉरिटी मेरे कहण दे नाल नहीं आ सकती, इस दी अथॉरिटी जो है वो सिर्फ गुरु नू है मंत्र देण दी, वो गुरु तो ही लेना पैंदा है तां जाके वो सफला हुंदा है, उसकी कमाई कीती हुई सफली हुंदी है। तो वो है जो शब्द सानू प्राप्त हुंदा है, फिर सिख दा फर्ज है अपनी जिंदगी दे विच उस शब्द नू वाहिगुरु शब्द नू रोजाना जो आरंभ ही कर रहा है वो रोजाना तकरीबन घंटा सवा घंटा बोल के उसका जाप करे, चार छह महीने टाइम नियत कर ले, जगह नियत कर ले और उसनू खुंजन ना दवे, कदे भी खुंजन ना दवे, उस टाइम ते बोल के पहला वो उस वाहिगुरु शब्द का अभ्यास करे जितनी देर हो सकता है, घंटा तो जरूरी करना चाहिए है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो टाइम नू वधाना चाहिए है, ते चार छह महीने उसका बोल के अभ्यास करना चाहिए है। उस तो बाद आहिस्ता आहिस्ता जदों वो शब्द साडे अंदर रच जाता है तो फिर साडी सुरत विच वो बैठ जाता है, फिर असी साइलेंटली अंदर अपने अंदर उसका अभ्यास करते रहने। तो इस तरह लगातार जो अभ्यास नितनेम नाल करता है वाहिगुरु शब्द का, सारी जिंदगी उसनू ओ खुजाउंदा नहीं है, गुरमंत्र का अभ्यास करता है, क्योंकि गुरु अपने वालों उसनू एक शब्द देंदा है, बस शिष्य नू शब्द देण दे विच ही गुरु कह दिंदा है कि तू ऐसा अभ्यास करना, तेरा काम सिर्फ इतना, बाकी सारा ही काम मेरा है, उसकी जिम्मेवारी ले ली, और उस जिम्मेवारी नू गुरु महाराज पूरी निभांदे हैं।
अगर सिख उस नूं पूरी तरह प्यार दे नाल श्रद्धा दे नाल कि मेरे गुरु ने आ वचन कीता है वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हां दा वचन बस पालना है, वचन पालन दे विच उन्हां दी प्रसन्नता है, वचन पालन दे विच उन्हां दी खुशी है। उन्हां दे दित्ते हुए गुरमंत्र नूं जो कमाउंदा है वो इंसान जो है गुरमंत्र दी कमाई दे नाल उस दे अंदर मन च टिका आंदा है, मन च आहिस्ता आहिस्ता गुरमंत्र ही वस जांदा है, सुत्यां प्यां भी उस दे अंदर वाहिगुरु शब्द चलदा रहिंदा है, उठदियां बैठदियां जागदियां हर वेले उस दे अंदर वो गुरमंत्र वाहिगुरु शब्द जो है वो वसिया रहिंदा है। अते उस वाहिगुरु शब्द दी कमाई दे नाल उस दे मन दे अंदर वो इतना वस जांदा है कि बाकी तमाम मन दे ख्याल उस दे वैसे ही जो शांत हो जाते हैं। तो अखीर दे विच जिस वाहिगुरु नूं वो याद करता है, जिस नूं याद करिए उसके सारे गुण साढ़े अंदर आ जाते हैं, उसका सारा सुभा साढ़े अंदर आ जाता है, असी उस दे विच लीन हो जाने हाँ। उस दी कमाई दे विच्चों ही सानू जो है वह ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त होनी शुरू होंदी है। उसकी कमाई दे नाल होमे का नाश हुंदा है, सिख का एक बौंड हुंदा है, एक प्यार हुंदा है कि मेरे गुरु मंत्र मेरे गुरु का मंत्र है, जिस नाल उसका गुरु दे नाल बहुत डूंगा रिश्ता बनिया रहिंदा है। सो अज का कीर्तन दास इस विचार उत्ते समाप्त करना चाहता सी कि सानू गुरु महाराज जी ने अपनी बाणी च मार्ग दस्या है, उस मार्ग दे विच गुरबाणी तो उपदेश लेना है। उस दे विच ए उपदेश मिलते हैं कि अपनी मत नूं त्यागो, अपने हठ नूं त्यागो, अपना जो इधरों उधरों ज्ञान कट्ठा किया होया सुभा बने पए हैं, मन की मत त्यागो। हरजन इथों सी कीर्तन शुरू किया सी, उस नूं त्यागो। उस तों बाद गुरु उपदेश यह है कि डड्डा डेरा ए नहीं, जह डेरा तै जान, ए डेरा नहीं है, निज घर ए नहीं है, ए ते पता नहीं केड़े दिन इस घर दे विचों सा निकाले जाना है। दूसरा कीर्तन कीता सी, तीसरा कीर्तन कीता सी कि साडी जिंदगी दे विच जो भी असी कर्म करते हाँ उन्हां दा जाके अगे हिसाब किताब हुंदा है, और उस दे हिसाब किताब दे अनुसार साडी गति हुंदी है। जिसने गुरमंत्र दी कमाई नहीं कीती, जिसने साधु दे मार्ग ते चल के अपना जीवन नहीं गुजारिया, वह फिर अनेक किस्म के कष्ट भोगते हैं, अनेक किस्म दूना दे विच जांदे हैं। सो वह सारे दे सारे कीर्तन फिर इंसान ने अपने आपे नूं पहचानना है, यह भी पवित्र गुरबाणी का उपदेश है। सो बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ांगे तो ध्यान नाल उस दे विचों सानू जो गुरबाणी के पहलू हैं वह समझ आउंदे जाणगे। उन्हां नूं समझदिआं समझदिआं यह होएगा कि असी अपने ख्यालां नूं गुरु महाराज जी दे ख्यालां नाल रिप्लेस कर लवांगे, साडे अंदर अपने ख्याल नहीं रह जाणगे, गुरु महाराज जी दे ख्याल साडे ख्याल बन जाणगे। ते अंदाजा लगाओ उस इंसान दी महिमा कितनी कु वड्डी है जिस दे अंदर अपना कोई ख्याल ना होवे, सिर्फ गुरु दे ही विचार उस दे विचार बन जाण, तो उहदी विचारधारा कितनी उच्ची होई, कितनी पवित्र होई, कितना अंदरों शुद्ध हो गया, कितने अच्छे उस दे विचार हो गए। अते नाल नाल उसने फिर वाहिगुरु शब्द की जदों कमाई की, उसकी तपस्या की, उसका मन काबू च आ गया, उसका मन जितया गया, क्योंकि वाहिगुरु शब्द ने तमाम मन के ख्यालों अपने विच ही जज्ब कर जाना है। क्योंकि जिसका अभ्यास निता प्रति करांगे ओही एक ख्याल फिर अंदर रह जाएगा, बाकी तमाम ख्याल जो हैं वह बंद हो जाएंगे। उसके होण के नाल जदों अंदर बिल्कुल शांत हो गया, टिकाओ दे विच आ गया, मन जितया गया, सानू अंदरों ही अपने अंदरों साडा असल आपा जो है उस दे दीदार होंगे, सानू ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होएगी। ए ब्रीफली इतने कि दिनां दे विच मैं गुरु महाराज जी का जो मार्ग है आप जी की सेवा च रखने की कोशिश की है। हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत, अपने जीवन च गुरु धारण करो। महाराज जी अपनी बाणी दे विच एक गल आखदे हन, तो मैं वह भी सुनानी चाहना हाँ। कर्मवंती सलाहया नानक कर गुर पीर, गुरु पीर करके, सुन वाली गल है, गुरु पीर करके ही कहिंदे कमाई हो सकती है, वैसे नहीं कमाई हो सकती। ऐदा नहीं भी चार किताबां कितों पढ़ लो तो कितों चार पांच सैमीनार अटेंड कर लो, कितों कुछ इन्फॉर्मेशन कट्ठी करी जाओ, सोचो कि असीं अपने आप ते वर्क करना शुरू कर दिता है,
ਤੇ ਇਨਰ ਗਰੋਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਗੁਰ ਹਮ ਕੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਦੀਕਸ਼ਕ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮਲੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੀਖਿਆ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਪੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਗਰ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੋਰ ਫੈਲਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਧ ਸਹਿਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡਸ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਚੁਅਲ ਹੀ ਨਿਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਕੇ, ਨੀਅਤ ਹੋ ਕੇ, ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ। ਐਸਾ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਤਨੀ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਾ ਚ ਆ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੇਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਤਿੰਨੀ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਨਿਰਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੋਂ ਗਾਓ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ।

गुस्सा मन ना हंडाए, कोई तेरा बुरा करदा है किन्ना भी माड़ा बोलदा है, तू उसका भला कर, वो तेरा किन्ना भी माड़ा कर। पर इस जीव ने आखिया फरीद जी, मैं ते बुरे दा भला करांगा ते मेरा की फायदा होवेगा। ते सत्संगियो अगली पंक्ति विच फरीद जी कहिंदे, देही रोग न लगे पल्ले सब किश पाए, जेड़े देव बुरियां दा भला करदे ने उन्हां ते रब खुश हो जांदा है, ते जेदे ते रब खुश हो जावे ते सारियां खुशियां

कान्हा राग तो बाद कल्याण राग दा आना सुभाविक है। रागमाला विच भी गौरा और कान्हरा कल्याणा दी तरतीब रखी है। कल्याण खुशी पैदा करता है, आत्मा आनंद विचाई प्रभात दी लो दी उड़ीक करती है। प्रभु दी याद ने सिमरन ने दृढ़ करा दिता कि माया दे सारे जतन किसे काम नहीं। आनंद विचाई आत्मा लालन की शोभा सुन सुन खीवी हुंदी है। शब्द दे सिमरन दी बरकत नाल सदा सद जागत रहिंदी है आत्मा। अते कल्याण सावधान मुद्रा विच ही गाया जांदा है। इस राग विच गुरु रामदास जी अते गुरु अर्जन देव जी ने बाणी उचारी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग भेद अनुसार कल्याण राग दे अधीन राग कल्याण भुपाली भी आउंदा है। कल्याण अते कल्याण भुपाली दोनों भिन्न अते सुतंत्र राग हैं। कल्याण राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द हैं अते कल्याण भुपाली विच केवल 1 शब्द है। इस राग विच तीबर मध्यम अते बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। इसका बाजी सुर गंधार अते समाधि निषाद है। गायन समा है रात का प्रथम पहर। राग कल्याण विच सरवण करो 2 शब्दों का कीर्तन। पहला शब्द है प्रभ मोहे कब गल लावह गे प्रोफेसर करतार सिंह जी। दूजा शब्द गायन कर रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। शब्द है गुण नाद तुन आनंद वेद। सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी होरां पासों प्रभ मोहे कब गल लावह गे।